0: ये है
1: लाइका रेडियो।
2: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
3: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
2: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
3: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन।
2: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स।
3: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी।
2: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000।
3: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: It was just another day. A familiar drive. Through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
5: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
6: Four beers, please, garçon!
5: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
7: Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
3: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर.
4: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
2: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Laika Radio.

0: ये है लाइका रेडियो, भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
2: द बॉलीवुड किंग बाली ब्रह्मभट्ट विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड क्लासिक्स एवरी वीकडे एट 1 PM।

सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंधगोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भाव है साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे।

0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: दादा।
0: सुनो तो
1: दादा।
0: ना सुनो तो सुनो तो
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम?
0: हाँ।
1: काम सीधा साधा है, मेरा एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार को निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: और अपने कमरे में तशरीफ ले जाइए।
1: हेमा, जब भी तुम्हारे शराबी चेहरे को देखता हूँ तो मेरे तन में बिजली आ जाती है।
0: क्या?
1: मेरा मतलब है कि पुराने दिनों की याद आ जाती है। याद है हेमा, जब हम छोटे छोटे थे, आंख में छुरी खेला करते थे, तुम आगे आगे और मैं हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ा करता था और लपक कर तुम्हें गोद में उठा दिया करता था। याद है? याद है हेमा, तब तुम यहाँ तक, मेरा मतलब है यहाँ तक फ्रॉक पहना करती थी। अब कितना फर्क आ गया है तुम्हें।
0: मिस्टर सागर, भैया नीचे डाइनिंग हॉल में इंतजार कर रहे हैं।
1: देखिए, किस अनरोमांटिक आदमी का नाम ले लिया। वो पेटू राम तो हमेशा डाइनिंग टेबल पर ही बैठा रहता है। एक हम ही है जो किसी के बेडरूम में सुंदरता का मजा लेना चाहते।
2: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404 793 719. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
3: A pound can buy you 127.5 Indian rupees. Make sure you transfer via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
3: I've got to say good morning to one listener this morning who I've not spoken to or has not messaged us in a long time. Mustafa, India se aap kahan the? Kaafi time ke baad aapne hame message kiya hai. Kahan the aap? Aap bataiye hame. मौसम कैसा है वहां पे, यही बताइए हमें। और मीन टाइम लेट्स गेट बैक टू द म्यूजिक। एक गाना भी डेडिकेट करूंगी आपके लिए, फिल्म बॉबी से। ये ऐसा कोई गाना नहीं है जो मैं आपको ही लाइक लिटरली हाउ कैन आई से, आई एम नॉट सेइंग दिस सॉन्ग इज लिटरली फॉर यू, बट इट इज फॉर यू इफ यू नो व्हाट आई मीन।
2: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Breaker Radio. This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colors TV. Khatron Ke Khiladi, every Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV.
1: Khatron Ke Khiladi. Lester Mella is back.
2: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
1: Roach Killer. Get ready for big tunes, big vibes, and a massive live performance.
2: Hosted by the team of Lyco Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
1: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council,
2: Arts Council England.
3: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In the

0: Mabster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mabster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
3: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela, and survivors desperately need your help. Go to dec.org.uk to donate, or text radio to 70150 to give £10. Text costs your donation plus standard network rate. Thank you.
4: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100. एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी.
5: ये है लाइक अ

0: ¡Anunciar!
1: Good morning. Welcome to the world of entertainment. स्वागत है आपका मनोरंजन की दुनिया में। आज बुधवार वर्ष 2026 के जुलाई महीने की 29 तारीख और वक्त हो गया है हमारी आपकी मुलाकात का। और आप जानते हैं भाई बुधवार किस बात के लिए निश्चित है मनोरंजन में? आप भूले नहीं है वो स्लोगन, बहाने ढूंढते हैं हंसने हंसाने के, ठहाके लगाने के, क्योंकि साहब चारों तरफ हमारे परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं। ऐसे में भाई खुशी और हंसी बहुत महंगी हो गई है। क्या है कि तू धूप से है तंग, वो बरसात से दुखी है, दुश्मन है दिन किसी का तो कोई रात से दुखी है। अब आम आदमी ही नहीं अकेला दुखी, यहां राजाओं को देखो, वो महल की हालात से दुखी हैं। पत्नी है कौन और पति कौन आप में, शोहर पड़ोसियों के सवालात से दुखी हैं। होते हैं बहुत लोग मेरी गुफ्तगु से खुश, और कोई है कि वो मेरी हर एक बात से दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, साहब दुखों को दूर करने के लिए, परेशानियों को मजबूर करने के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ। हंसी के ठहाके बांटेंगे आज के प्रोग्राम में।
2: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Back to back hits across the Leica Radio network.

0: माटी मिली सुनती च नहीं। महमूद की आवाज पहचान ली होगी आपने भाई, गीत तो रफी साहब ने गाया लेकिन बीच में जो मसाला लगाया वो महमूद साहब थे। हंसने हंसाने का दिन है आज भाई, बना लीजिए बस जुड़ जाइए हमारे साथ। गीत दो परोसे हमने, पहले गीत में कुछ ऐसी शब्दावली थी कि हंस तू हरदम खुशियां या गम, किसी से डरना नहीं, किसी से नहीं डरना, सिवाय छोड़ो क्या रखा है सच्ची बातों में, नहीं, किसी से डरना नहीं। कैसे नहीं डरना भाई, हमारी बहन लिख रही है कि या अली मदद भाई, डरने की बात आप कर रहे हो, डरना तो पड़ता है। वाह फरीदा गुलाम अली जी लिखती हैं कि पहले हम अम्मी अब्बू से डरते थे, माता पिता से डरते थे, बच्चे थे तो, बड़े हुए फिर शादी हुई तो बेगम से डरने लगे, शोहर से डरने लगे, फैमिली से डरने लगे, उसके बाद बच्चे हो गए, आजकल बच्चों से भी डरते हैं भाई। डर तो साथ चलता है जिंदगी में, नहीं ऐसी बात नहीं है, सभी नहीं डरते हैं, हमारा तो पूरा रोब है जी, हम तो किसी से भी नहीं डरते हैं। बच्चा कहता पापा पापा आप सचमुच किसी से नहीं डरते? अरे किसी से नहीं डरते बेटा, क्यों डरने की बात क्या है, आपको शेर से डर नहीं लगता? अरे शेर से, शेर क्या करेगा हमारा, बंदूक अपने पास लाइसेंस वाली, हम नहीं डरते। आपको आपको पुलिस से भी डर नहीं लगता? अरे पुलिस से क्यों डर लगेगा, हम कानून का पालन करते हैं भाई, हम नहीं डरते, हम किसी मिनिस्टर से भी नहीं डरते, हम किसी डिक्टेटर से भी नहीं डरते। पापा सचमुच आप किसी से नहीं डरते? क्या आप मम्मी से भी नहीं डरते? धीरे बोल बेवकूफ, किचन में है सुन लेगी। एक तरफ डर है और दूसरी तरफ वो खुद है, महबूबा महबूबा बना लियो मुझे दूल्हा, जला दियो मेरा चूल्हा। क्या कहेंगे आप इस स्टेटमेंट को, वो क्या एक कहावत है ना कि आ भैंस मुझे मार, नहीं मुझे दूल्हा बना लो, मेरे घर का चूल्हा जला दो, क्योंकि रोटियां तो मैंने ही बनानी है, खाली चूल्हा जला दो। आ भैंस नहीं होती भाई, बैल होता है। अरे नहीं इस मुहावरे में भैंस ही चलेगा, आप हैं मुझे ना।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लीजिए साहब नोट कीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके आज दे रहे हैं एक पाउंड के बदले 126.75 इंडियन रुपीस, दिस इज मैक्सिमम, और आप ट्रांसफर कर सकते हैं वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट First and Drive.
2: ये है
3: Laika Radio.
2: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार Bollywood night के लिए. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert, featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika, और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Laika Radio.
5: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116-266-6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.

0: Holidays, what's your travel mantra?
1: Birmingham Hodge Hill, this is not a drill. Pepe's is now open at 606 to 608 Bromford Lane. Get your chicken rice, chicken XL, flame grilled wings, strips, burgers, burritos and banging salads, all packed with Pepperlicious flavour. Birmingham, come and get it.
2: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
3: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
4: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
6: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ.

0: तो दीवाने दिल के चले हैं देखो मिलके। पर कुछ दीवाने संदेश भेज रहे हैं। एक हमारे दीवाने दोस्त हैं हितेश पटेल, हिंदुस्तान में सुन रहे हैं प्रोग्राम और कहते हैं आई एम एंजॉयिंग योर शो रवि जी।
1: दो दीवाने दिल के,
0: दो, एक हितेश एक रवि शर्मा।

जज साहब कहते हैं कि तुम तेज गाड़ी चला रहे थे। कहता हुजूर मैं कैसे तेज गाड़ी चला सकता हूँ, आपको नहीं मालूम मैं अपनी ससुराल जा रहा था अपनी बेगम को लिवाने, मेरी गाड़ी इसी रूट पर तेज चल ही नहीं सकती। बेगम को लेने कोई तेज रफ्तार से कैसे जा सकता है।

0: मैसेज।
1: मोहम्मद रफी और मन्ना डे गा रहे थे ये गीत फिल्म जोहर महमूद इन गोवा से। अब गीत संगीत के क्षेत्र से निकल करके भाई हम अब खबरों की ओर रुख करेंगे। आप सुनेंगे आज के दिन के साथ जुड़ने वाले प्रमुख समाचार। लेकिन उससे पहले बता दें कि भाई प्रधानमंत्री ने मीटिंग बुलाई है, क्रॉस पार्टी डिस्कशंस। लेकिन इस पार्टी डिस्कशंस में नाइजल फराज साहब को शिकायत है कि उनकी पार्टी को इनवाइट क्यों नहीं किया गया। बर्नम डिलीवरिंग सोशल केयर स्पीच बिफोर क्रॉस पार्टी समिट। नए प्रधानमंत्री, नई योजनाएं, नई नई मीटिंग्स, बैठकें। अंग्रेजी में समाचार आप हर घंटे हमारे यहाँ से सुना करते हैं, लेकिन हिंदी में खबरें, हिंदुस्तानी में न्यूज जो है उनका समय हुआ जाता है।
2: Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: और अब एक सूचना, एक संदेश भाई। डोंट फॉरगेट द मच अवेटेड प्रिंस ऑफ गजल्स रंजीत राजवाड़ा परफॉर्म्स लाइव दिस थर्सडे यानी टुमारो, कल 30 जुलाई को शाम 7 बजे हेरो आर्ट सेंटर में उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। आप भी जुड़ जाइए भाई। गेट योर टिकट्स नाउ फ्रॉम heroarts.com. यूज द कोड लाइका रेडियो फॉर 10% डिस्काउंट ऑफ योर टिकट्स ऑनलाइन। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ कोर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: लाइका रेडियो नेटवर्क। अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। जापान में भूकंप से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी है। जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में आए तेज जलजले में अब तक 13 लोगों की मौत की खबर आई है। प्रधानमंत्री सनाई तकाईची ने कहा है कि राहत और बचाव दल समय के साथ होड़ कर रहे हैं। ये जलजला, ये भूकंप कल मंगलवार को लोकल वक्त के अनुसार शाम 4:27 पर क्यूशू आइलैंड के अंदरूनी हिस्से में आया था। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसकी तीव्रता 6.8 बताई है। भारत से आने वाली खबरों में पार्लियामेंट कैंपस में कीर्ति चिदंबरम और निशिकांत दुबे के बीच किसी बात को लेकर के बहस हुई है, वो चर्चा में है। कल मंगलवार की रात संसद कैंपस में कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कीर्ति चिदंबरम और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच बहस छिड़ गई। रात करीब 10 बजे निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट किया कि उन्होंने स्वीकार किया कि संसद ब्रिटिश कंपनी में, ये सांसद ब्रिटिश कंपनी में डायरेक्टर थे। भैया आपको नाम सुना हुआ लगता है, कीर्ति चिदंबरम पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम के सुपुत्र। इसके जवाब में कीर्ति है या कार्ति चिदंबरम कहते सुनाई देते हैं कि मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि कंपनियां कैसे काम करती हैं। दरअसल उस समय कार्ति चिदंबरम संसद में जा रहे थे और निशिकांत दुबे अपनी कार में बैठे हुए थे। कॉमनवेल्थ खेलों की ओर रुख करें। गुलवीर सिंह ने रचा इतिहास, 10,000 मीटर की दौड़ में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले हिंदुस्तानी बने। भारत के स्टार धावक गुलवीर सिंह ने ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ खेलों में कल मंगलवार को इतिहास रच दिया। उन्होंने पुरुषों की 10,000 मीटर स्पर्धा सिल्वर मेडल जीतकर यह इवेंट जो है, इस इवेंट में पदक हासिल करने वाले वो पहले भारतीय बने। ट्रंप ने चीन पर इल्जाम लगाया और बैन लगा दिया, इस टेक्नोलॉजी को बताया सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। कौन सी टेक्नोलॉजी? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कल मंगलवार को अमेरिका में ह्यूमनाइड रोबोटों के नए इंपोर्ट पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि ये रोबोट देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये पाबंदी उन डेवलप्ड रोबोट्स पर लागू होगी जिनमें ह्यूमनाइड और 4 पैरों वाले रोबोट शामिल हैं। इनमें से कई रोबोट चीन में बनाए जाते हैं। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि ईरान ने मिडल ईस्ट में उसके ठिकानों पर अचानक हमला कर दिया और कई बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं। हालांकि अमेरिकी फौज का कहना है कि सभी मिसाइल्स को कामयाबी पूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया गया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमला कल शाम को हुआ, मंगलवार की शाम को। संभावित निशानों या ठिकानों की जानकारी पब्लिक नहीं की गई है। इसके जवाब में अमेरिकी और सऊदी अरब की सेनाओं ने पूर्वी इराक में ईरान की समर्थित आतंकवादी ठिकानों पर सांझी कार्रवाई की है। यूक्रेन स्थित भारतीय एम्बेसी ने कार्गो जहाज एमवी एजियन रागनर पर हुए हमले को लेकर के एक बयान जारी किया है। एम्बेसी ने एक्स पर जारी स्टेटमेंट में कहा कि एमवीएजीएन रागनर, इससे जुड़े घटनाक्रम पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। ये जहाज कल ओडिशा बंदरगाह पर हमले की चपेट में आ गया था। बयान के अनुसार 25 जुलाई को एमवीएजीएन रागनर पर ओडिशा पोर्ट के पास हमला हुआ था। इस पर 4 भारतीय नाविक सवार थे। आपको बता दें कि दुनिया भर के कई जो शिपिंग एजेंसी जो है भारतीय नेवल कर्मचारियों को एम्प्लॉय करते हैं। कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने नए एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी पर अपनी टिप्पणी को लेकर उठे विवाद पर रिएक्ट किया है। आज सुबह संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उसमें क्या संसद दिया था जो मैंने कहा, क्या पार्लियामेंट्री नहीं था, जो मैंने बोला वो सच्चाई थी। अगर वे मुझे सच बोलने के लिए सजा देना चाहते हैं तो दें, मैं सच बोलूंगी। और ये खबर, कोयला घोटाले में आज बुधवार को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
2: ये है लाइका रेडियो, Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: This is Leica Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: Southall Travel, याद दिला रहे हैं आपको कि भाई वो जो दुबई ट्रेवल के बारे में स्टेटमेंट थी ना, FCDO द्वारा जो सलाह जारी की गई थी, दे हैव लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई. कॉल Southall Travel फॉर द मोस्ट कंपेटिटिव दुबई डील्स ऑन 0208574 8410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.

और लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो .com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी न्यू हिट्स ऑन लाइका रेडियो।

0: गोल्ड रेट ढूंढ के लाना पड़ता है भाई. The gold is sold at the rate of 97.63 pounds per
1: gram. Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
2: This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colors TV. खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 8 PM ऑन कलर्स टीवी.
3: खतरों के खिलाड़ी.
4: लोकेशन लोकेशन लोकेशन.
5: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर.
4: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियल, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
5: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन.
4: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स.
5: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी.
4: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.
0: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
2: लंदन, आर यू रेडी? रागा Event presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ova Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
8: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
7: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
1: डाउनलोड द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप, लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट शोस.
9: Two devastating earthquakes have hit Venezuela and survivors urgently need support. Please help now. Go to dec.org.uk to donate. Thank you.
1: This is the largest commercial Asian radio network in the UK.
10: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the tide. Check my phone. Why do I need to take my...
11: Hey, boy!
12: Coast Guard, we're stuck.
13: Okay, help's on its way.
12: Hold on, mate.
14: Shoes tied. Phone.
15: Back before dark, love. Okay.
16: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
17: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
0: ये है लाइका गोल्ड

0: जिंदगी।
1: लिसन टू लाइका गोल्ड 2 ऑन लाइका रेडियो मोबाइल ऐप laikaradio.com एंड एलेक्सा प्ले लाइका गोल्ड 2। बॉलीवुड्स बिगेस्ट 90s सॉन्ग्स नॉन स्टॉप।

0: to Laika Radio 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken, with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount. Plus, a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
2: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा.
4: और लीजिए साहब, किशोर कुमार व लता जी की आवाजों में ये गीत हमें लेकर के चलेगा 11 बजे की खबरों तक. खबरों के उस पार होगा आज का विचार चिंतन.
5: अरे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने हैं
6: हमारे.

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। चिंतन का समय है और पर्व है गुरु पूर्णिमा का। गुरु ज्ञान को कहते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो पथ जिसने दिखलाया, अपने आप से जिसने मिलवाया, उस गुरु को प्रणाम नमस्कार। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। अज्ञान के अंधेरों से हमारे ज्योति देने वाले ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान के अंजन से हमारी आंखों में रोशनी भरने वाले चक्षुरुन्मीलितम येन, जिनसे हमें दृष्टि मिलती है, चक्षु आंखें, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के चिंतन के लिए हम गुरु पूर्णिमा पर्व पर चर्चा करते हैं। बहुत सारे संदेश हमें मिले हैं। वत्सला जी, आपके श्लोक बड़े अच्छे लगे, लेकिन भारत से वीना बहन जी ने हमें आज के चिंतन में शामिल करने के लिए आलेख भेजा है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन भाई हर पर्व पर, इस त्योहार पर मैं सुबह 4 बजे लगभग जो है भारत फोन करता हूँ। वहाँ सत्संग चल रहा होता है, गुरुजी के आश्रम में भारी भीड़ जुटी होती है, क्योंकि वहाँ तो 8:30-9 बजे का समय होता है। लेकिन मुझे याद है गुरुजी भी बहुत अर्ली उठते थे, कभी 3, 3:30 बजे, 4 बजे तो वॉक के लिए निकल जाते थे, एक्सरसाइज के लिए, और 5 बजे वापस लौट करके नहा धो के हम सत्संग शुरू करते थे। वीना बहन जी याद दिलाती है बचपन में मैं और मेरा मित्र दो जन व्यक्ति मिलकर के गुरुजी के पास गए। मन में बैराग जागा था। हर किसी के मन में कभी कभी लगता है कि दुनिया में क्या रखा है। चलो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भजन कीर्तन और सत्संग के माध्यम से गुरु चरणों में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करें। हम दोनों गए जाके गुरुजी से प्रार्थना की हमें अपना शिष्य बना लीजिए। गुरुजी ने देखा स्कूल के बच्चे हैं, पढ़ने की उम्र है, पता नहीं कैसे बैराग जाग गया, हमारे उपदेश सुनकर के बैरागी हो गए हैं। गुरुजी ने कहा भाग जाओ यहां से, मैं गुरु चेला नहीं बनाता, मैं शिष्य नहीं बनाता। हमने कहा गुरुजी इतने शिष्य हैं आपके, भारी भीड़ जुटती है हर वीकेंड पर, हम दोनों को भी अपने शिष्य बना लीजिए। तब गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात कही बहनों भाइयों, उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैं शिष्य यानी चेला नहीं बनाता हूं, मैं तो गुरु बनाता हूं, बोलो बनोगे? गुरु जी हमें गुरु बनाएंगे? हां बनना है तो बोलो। अब संतों की बातें अटपटी होती हैं, समझ से बाहर होती हैं कभी कभी, जाने क्या इशारा कर रहे हैं गुरु जी। हमने कहा हां गुरुदेव आप जो बनाएंगे हम बनना चाहते हैं, बनाइए, पर आप हमें गुरु कैसे बनाएंगे? हमें तो न शास्त्र आते हैं, न अच्छी तरह संस्कृत आती है, न श्लोक आते हैं, न विद्या आती है, न वैराग। गुरुजी ने कहा हम बनाएंगे ना, हम सिखाएंगे, बस सत्संग अटेंड करो, घर जाओ, अपने स्कूल की पढ़ाई, अपनी घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए हर वीकेंड पर सत्संग में आओ। जानते हो संत वही है जो हृदय से आपका मन परिवर्तित करें, मन को बदले। कपड़े बदलने से संत नहीं बनते, विचार बदलो, व्यवहार बदलो, तो संत बन जाओगे, गुरु बन जाओगे। कमाल है, उन्होंने कहा पारस अगर उससे आप लोहे को छुआ दे तो वो सोना बन जाता है। पारस में और संत में यही भेद तू जान, पारस तो सोना करे, पारस लोहे को छूकर सोना बना देगा लेकिन पारस नहीं बनाएगा। संत में ये गुण है, जो सच्चा संत है वो अपने जैसा संत बनाएगा। पारस में और संत में यही भेद तू जान, पारस तो सोना करे, संत करे आप समान। वीना बहन जी ने सोहम आश्रम रोहतक से ये संदेश भेजा, साथ में राज भाटिया और हमारे सैनी साहब,
बहुत सारे लोगों के संदेश आए हैं। यहाँ सुनीता शर्मा जी लिखती हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। भाई ईश्वर की जानकारी भी गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होती है। गुरु ही पहचान कराता है, मिलवाता है। जो गुरु चरणों में समर्पित हो जाता है वही ईश्वर को पाता है। शिवाजी के पास उनके समर्थ गुरु रामदास जी आए तो शिवाजी ने कहा, बैठिए, महाराज सिंहासन छोड़ दिया। राजा संतों को महाराज कहते, यानी वो राजाओं से भी बड़े महाराजा। बोलो शिवा, गुरु दक्षिणा में क्या दोगे? गुरु पूर्णिमा के दिन बहनों भाइयों, जो आज का दिन है, शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देते हैं। छत्रपति शिवाजी ने कहा, प्रभु सब कुछ आपका है गुरुदेव, ये राजमुकुट, ये राज सिंहासन सब आपका है, तो ठीक है मेरे हवाले कर दो। शिवाजी ने एक पल भी नहीं लगाया, सिर से मुकुट उतारकर गुरुजी के चरणों में रख दिया। ये राज, ये सत्ता, ये वैभव सब आपका है गुरुदेव, मेरे लिए बताइए क्या आज्ञा है। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, मैं राजा हूं और तुम मेरी प्रजा हो, मेरा आदेश मानना तुम्हारा कर्तव्य है। हाँ महाराज, आज्ञा कीजिए। शिवाजी ने कहा, तो मुकुट उठाकर उन्होंने वापस शिवाजी के सिर पर रख दिया और कहा, मेरी आज्ञा मान करके ये राजकाज सफलतापूर्वक चलाओ, सहजता से चलाओ, पवित्रता से चलाओ, बस यही मेरा आदेश है, तुम्हारे राजा का आदेश। प्रजा को में किसी को भी दुख ना पहुंचाओ। और शिवाजी धन्य हो गए। इसीलिए लोग कहते हैं कि गुरु और गोविंद दो खड़े, दोनों में से पहले प्रणाम किसे करेंगे? भाई गोविंद से तो हमारा परिचय ही नहीं था, गुरु ने बताया, गुरु ने मिलवाया, इसलिए पहले गुरुजी को प्रणाम, फिर ईश्वर को। गुरु का गौरव हमें ईश्वर से मिलाता है।

साथ समुद्रों की स्याही बना करके, सारे जंगलों की लकड़ी से कलम बना करके, पूरी धरती को कागज बना करके अगर मैं गुरु की महिमा लिखूं

0: आज का चिंतन।
1: चिंतन चिंतन
0: थॉट फॉर द डे आज का विचार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भाई आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को ये पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा जब शिष्य अपने गुरु को धन्यवाद देते हैं, गुरु दक्षिणा देते हैं, आभार प्रकट करते हैं, मुझे याद है हमारे गुरुजी के आश्रम में भाई गुरुजी अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं, 100 बरस तक लोगों को सात्विक विचारों से मालामाल करते हुए गुरुजी प्रस्थान कर गए, लेकिन उनके उपदेश उनके वचन आज भी याद हैं। और एक घटना, गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत सारे लोग दूर दूर से आते और गुरुजी को भेंट चढ़ाते, उनके चरणों में गुरु दक्षिणा अर्पण करते। और मैं तो आश्रम में ही रहता था गुरुजी के पास, और सब पूछते हैं कि गुरुजी रवि ने क्या चढ़ाया आज गुरु दक्षिणा के रूप में। और गुरुजी मेरा बहुत मान करते, बहुत बढ़ाते थे मान, मेरा हौसला बढ़ाते, मैं कुछ चढ़ाने के काबिल था ही नहीं। वे रातों को हफ्ते में एक या दो बार रिक्शा चलाने वाला क्या अर्पण करता, तो गुरुजी ने सबको डांट के कहा मत पूछो रवि ने क्या चढ़ाया है, आपने किसी ने धन, किसी ने वस्त्र, किसी ने फल फ्रूट मिठाई, आपने तो पदार्थ चढ़ाए हैं, रवि ने खुद को चढ़ाया है, वो तो खुद ही अर्पण हो गया है, मेरे आश्रम में रहता है, सेवा करता है। मुझे लगा कि गुरुजी को हौसला बढ़ाना कितना अच्छा आता है, मार्गदर्शन कितना बढ़िया आता है। एक बार मेरी फीस के पैसे लेट हो गए भाई, और मैंने गुरुजी को कॉलेज से ऑफिस से फोन किया, गुरुजी कुछ पैसों की आवश्यकता है। गुरुजी बोले तो फिर क्या सोच रहा है, क्या मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं एक सप्ताह में वापस लौटा दूंगा। कहते हैं फौरन चल कर आओ और ये पैसे लेके जाओ। जब मैं पैसे लेने गया भाई, फीस के पैसे भरने थे, तो गुरुजी ने कहा सुनो बेटा, ये रिक्शा तुम्हें इसलिए चलाने देता हूं कि तुम्हारा स्वाभिमान बना रहे, तुम्हें एक दिन गर्व होगा कि तुम कितनी मेहनत करके पढ़े हो, आगे बढ़े हो, वरना जानते हो इतना स्नेह है मेरे मन में तुम्हारे लिए कि तुम्हारे ऊपर से करोड़ों रुपए वार करके मैं दान कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें मेहनत करने देता हूं, संघर्ष करने देता हूं, ताकि एक दिन तुम अपने इस संघर्ष पर गर्व कर सको, फख्र हो तुम्हें। ऐसे होते हैं गुरु भाई, अपने व्यवहार से, अपने बर्ताव से हमें जीना सिखाते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। गुरु गौरव को कहते हैं, गुरु ज्ञान को कहते हैं, उस ज्ञान का सम्मान कीजिए। आज गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के वचनों को अपने मन में धारण कीजिए, उन्हें अपने व्यवहार में डालिए।
1: चिंतन चिंतन।
0: बीना बहन जी रोहतक से सुहाम आश्रम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राज भाटिया जी और यहाँ विजय मॉरिशस वाले अरुणा भूपेंद्र हरविंदर जी, थैंक यू वेरी मच। राजेंद्र राज, रागिनी अर्जुन, सुनीता, जगदीश रानी और स्पेन में भी हमारे श्रोता भाई सुन रहे हैं। किरीट भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच। हरीश रोडा जी, सलाव में पम्मी, नरेंद्र पांचाल, भरत गंगाराम और भारत में हितेश पटेल, थैंक यू वेरी मच भाई। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है। ये भी याद दिला दूं कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है।
1: चिंतन चिंतन।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
0: आइए लौट आइए भाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं कि भारत अगर पैसे भिजवाना चाहते हैं तो रेट अच्छा चल रहा है। यस्टरडे दे आर गिविंग 126.75 रुपीस मैक्सिमम फॉर 1 पाउंड। 1 पाउंड के बदले 126.75 रुपए का रेट है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI यूके मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
4: Lister, stock up and save at Falcon Cash and Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 7.49. Leela Medium Atta 10 kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 3.99. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash and Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE1 2JU, and 2A Rollout Hill, Leicester, LE5 4UN.
1: South of travel 7 days a week. South of travel 24 hours a day.
2: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai. Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
1: Southall Travel can take you there.
5: Southall Travel, at all protected.
6: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
7: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
6: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
7: with the Royal Philharmonic Concert.

0: आंख मारने का काम ठीक नहीं है भाई, किसी को लग सकती है, चोट लग सकती है।
1: काय को आंख मारू?
0: कुछ लोग तो आंख मारते हैं, कुछ लोगों की आंख अपने आप मर जाती है, मारने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार बचपन में, शायद सन 55 में, एक लड़की थी पास में बैठी थी क्लास में, नाम था उसका रेखा। जैसे उसने मेरी तरफ देखा आंख मर गई। मैंने नहीं मारी, मर गई। अपने आप आंख चल जाती है भाई, पता नहीं कैसे निकल जाती है।

0: रोको रोको आंखों को रोको, कानों को सजग कर लो, सुनो ध्यान से। लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर फॉर दिवाली स्टोरी। बड़ी चर्चा में है भाई दिवाली स्टोरी द म्यूजिकल दैट सोल्ड आउट द रॉयल अल्बर्ट हॉल एंड नाउ अराइव्स एट ओवो वेम्बली अरीना ऑन संडे द 27th ऑफ सितंबर। भाई नोट कर लो, ये शो देखने जाना है आपको 27 सितंबर को शाम 6:15 से 9:30 के बीच ये शो होगा। क्रिएटेड बाय सनातन इवेंट्स फाउंडर नितिन पालन MBE एंड फीचरिंग कोरियोग्राफी फ्रॉम द बॉलीवुड डांस स्कूल टीम। द इंग्लिश लैंग्वेज प्रोडक्शन ब्रिंग्स द रामायण टू लाइफ। आपको बताएं, इनका भाई एक छोटा सा यू नमूना जैसे ट्रेलर होता है, ये दिखाया गया पिछले वीकेंड पर और ये प्रदर्शन किया कलाकारों ने लंदन आई के बाहर। क्या खूबसूरत समा बन रहा था, लोग जहां खड़े थे वहीं खड़े रह गए और जैसे कि किसी फ्रेम में जड़े रह गए, देखते रहे वो सुंदर प्रदर्शन। राम जी सीता जी के साथ बहुत सारे नृत्य करने वाले बच्चों ने कलाकारों ने वहां समा बांधा, तो जरूर जाइएगा भाई। वो तो जरा सा थोड़ा सा ट्रेलर था, असली प्रदर्शन तो 27 सितंबर को वेम्बली अरीना में, ओवो वेम्बली अरीना में शो हो रहा है। टिकट्स के लिए कहां है, टिकट्स के लिए www.diwalistory.com नोट कर लीजिए। LYCA
1: This is Laika। ये है Laika Radio Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: और लाइक अ गोल्ड पर ये भाई सूचना आप तक पहुंचा दें हम कि हमारा भी जो पॉडकास्ट सिस्टम है ना उसमें नया एपिसोड आ गया है और इस बार दीप राजा बात कर रहे हैं मीनल समरे से और ये सामरिया ग्लोबल फाइनेंस से हैं जो फाइनेंस के बारे में बड़ी गहन जानकारी देती हैं दीप राजा के साथ बातचीत में. तो डोंट फॉरगेट टू वॉच द न्यू एपिसोड नंबर 26 ऑन लाइका एक्स्ट्रा.
0: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट
3: जरूर देखिएगा. It's available on many streaming platforms.
0: Laika Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
1: Laika Radio. Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara.
4: Nazar se nazar.
1: Performing live in Birmingham on Friday, 31st July at Albury, Birmingham. Book your tickets now on eventbrite.com. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets just £25, including a three-course meal. The exclusive Radio Partner, Laika Radio Network.
5: London, are you ready? Raghav Ent presents to you for the first time, legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Miyan Chote Miyan this December.
6: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiyan.
5: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.

0: bit of the gorga piada pani.
1: All Mamster products are nut-free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well-planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
3: Mum always said, Beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
4: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं, जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 पाउंड, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
5: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
6: Punjab, the biggest tunes.

गीत को सुनकर अगर आपको संजय दत्त की याद आई है तो बता दें भाई, संजय दत्त को आज बहुत बहुत बधाई है। किस बात की? जन्मदिन है उनका। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू संजू बाबा।

0: लक तेरा लक तेरा भाई, ये लक भाग्य को कहते हैं शायद, लेकिन किसी पंजाबण को मत कह देना, वो सैंडल उतार लेगी फिर। लकी कबूतर संजय दत्त के साथ साथ आज और भी कई लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं, आगे चल के चर्चा करते हैं। फिलहाल तो करेंसी रेट्स बाय लैम्फाई।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और आपको बता दें, for £1 they are giving in Indian currency 127.19 rupees. पाकिस्तानी रुपए 369.26. श्रीलंकन रुपए 445.46. बांग्लादेशी टके 163.73 और अफगानी 87.02.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. LIKA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: The gold is trading at the rate of 97.52 pounds per gram.
1: Specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Leica
3: Radio. This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colors TV. खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 8 PM ऑन कलर्स टीवी।
4: खतरों के खिलाड़ी।
5: सिटी बॉन्ड ट्रैवल प्राउडली प्रेजेंट्स यात्रा टूर्स 2026।
6: डिस्कवर कैलाश मानसरोवर, चारधाम, अमरनाथ, श्रीलंका विद अयोध्या, अयोध्या विद काशी, द गोल्डन टेंपल अमृतसर एंड मोर।
5: बुक बिफोर द 31st ऑफ अक्टूबर एंड गेट £150 ऑफ कैलाश और £100 ऑफ एनी अदर यात्रा टूर।
6: ऑल्सो एक्सप्लोर 2026 क्रूजेस
5: फ्रॉम अलास्का टू द कैरेबियन, द मेडिटेरेनियन, जापान एंड कोरिया। विजिट अस एट 5 मिल्टन रोड, लेस्टर, और कॉल सिटी बॉन्ड ट्रैवल on 01162 167 225. We're at all protected.

0: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी

0: वजाहत अली को उसकी औरत ने मारा। बैक टू बैक संगीत के तहत भाई दो गीत हमने परोसे आपके सामने और मुझे यकीन है कि आपको पसंद आए होंगे। आज बुधवार है और बुधवार का मतलब है कि शरारतें अलाउड हैं आज, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हर दिन बुधवार हो जिंदगी का।
1: मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, सात दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार।
0: कभी कभी हंसने का नतीजा भाई गड़बड़ हो जाता है। हमारे एक दोस्त के माथे पे पट्टी बंधी हुई, हाथ में बाजू में पट्टी बंधी हुई, हमने कहा भाई क्या हुआ, कहता कुछ नहीं, एक पहलवान था वो वहां पर फिसलन थी सड़क पे, वो फिसल के गिर पड़ा। तो इसमें चोट तुम्हें क्यों लगी भाई, फिसल के वो गिरा, चोट तुम्हें लगी है, सिर पे लगी, माथे में लगी, हाथों पे लगी है। हम अगर उसको इस तरह से देखते हम तो भाई ठहाका लगा के हंसते। कहने लगा मैं भी ठहाका लगा के हंसा था, वो पहलवान था, जो गिरा था वो पहलवान था। हंसने का नतीजा ये, सोच समझ के देख के हंसना चाहिए भाई।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं भाई, आज का रेट एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग 126.75 रुपीस मैक्सिमम। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप।
2: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई। दिस इज लाइका रेडियो।
3: दिस पार्ट ऑफ द show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
5: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika, और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
6: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Laika Radio.
7: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 7.49. Leela Medium Atta 10 kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 3.99. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A, Syston Street West, Leicester, LE1 2JU and 2A, Rollards Hill, Leicester, LE5 4UN.
8: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.
9: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
10: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything, from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines, and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
11: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
11: High appreciation.
12: In Dubai.

0: सुरीला इनविटेशन, जब दीप जले आना। यसुदास और हिमलता की आवाजें तो जरूर संगीत रविंद्र जैन साहब का रहा होगा, इतना मीठा संगीत।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: और बहन भाइयों, आज अनूप जलोटा जी का भी जन्मदिन है। कहाँ मना रहे हैं? वैसे मुझे पता है वो आ रहे हैं यहाँ अपना कार्यक्रम करने के लिए, लेकिन अनूप जलोटा साहब तो भाई यत्र तत्र सर्वत्र, कहीं गीतों की महफिल हो या गजलों की या फिर भजनों का कोई सात्विक वातावरण हो, जान डाल देते हैं। भाई अनूप जलोटा जी से पहली बार परिचय हुआ था इस गजल के माध्यम से, और वो इस तरह से गा रहे थे जैसे गीत के शब्दों में अंगड़ाइयां नहीं, उनकी आवाज अंगड़ाइयां ले रही है।

0: चांद अंगड़ाइयां ले रहा है और चांदनी मुस्कुराने लगी है। अनूप जलोटा भजन गाएं तो संत रूप हो जाते हैं, गजल गाएं तो वही शायर नजर आते हैं। 29 जुलाई को यानी आज के दिन 1953 में फगवाड़ा में जन्मे थे अनूप जी। और देखिए मेरा सौभाग्य भाई, अनूप जलोटा से मुलाकात से भी पहले मेरी मुलाकात उनके पूज्य पिताजी से हुई। उनके चरणों में बैठ करके मैंने भाई उनके मुखारविंद से भजन सुने, संगीत सुना। पुरुषोत्तम दास जलोटा, पुरुषोत्तम जी के मुखारविंद से सुना भाई। सुर और ये लय और ताल तो भाई अनूप जी को विरासत में मिले हैं, उनके खून में संगीत है। आ रहे हैं, इंतजार है उनसे मुलाकात का।
1: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: अनूप जलोटा जी को जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देते हैं भाई। इसके अलावा आज और भी तो किसी का जन्मदिन है ना, हार्डकोर है तो यही की, लेकिन आजकल मुंबई में ज्यादा नजर आती हैं हार्डकोर का भी जन्मदिन। आज कानपुर में जन्मी थी 1979 में, ये ब्रिटिश सिंगर है वैसे, लेकिन साहब आजकल कभी कभी कपिल शर्मा के शो में भी कॉमेडी करती हुई नजर आती हैं। राइट, नरेश गोयल एक नाम है भाई, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, बिजनेसमैन हैं, कभी जेट एयरवेज इनकी वो एयरलाइन होती थी। 29 जुलाई 1950 में जन्मे थे गोयल साहब, और बिजनेस में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं साहब, लेकिन वो बड़े अनुभवी और कारोबारी व्यक्ति हैं। ईश्वर उनकी आयु लंबी करे भाई, उनका भी जन्मदिन आज है। आपके घर परिवार में अगर किसी का जन्मदिन है तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इसके अलावा भाई एक ये याद दिला दें आपको, एक तो रागासन लाइक रेडियो नेटवर्क हैज कन्फर्म्ड पार्टनरशिप विद प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन, जिनकी डिटेल्स जो है वो laikaradio.com पर मिल जाएंगी। और दूसरा ये कि भाई दिवाली स्टोरी, लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ द स्टेज म्यूजिकल दिवाली स्टोरी टेकिंग प्लेस एट द ओवो अरीना वेम्बले, और ये संडे 27 सितंबर को हो रहा है। विजिट AXS और वेम्बले फॉर टिकेट्स।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

देस राज बैसन साहब याद दिला रहे हैं कि आज राजा मेहंदी अली खान साहब भाई गीतकार हैं, उनकी पुण्यतिथि है। 29 जुलाई को 1966 में वो इस दुनिया से विदा हुए, पर उनकी कलम से जन्मे गीत जिंदा है, लोकप्रिय है। सुनिए और एंजॉय कीजिए मेरा साया फिल्म का ये गीत, राजा मेहंदी अली खान साहब की कलम से जन्मा।

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410। दैट्स 0208-574-8410। Atom protected.
2: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
3: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's mango pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
2: Jaimin Foods mango pulp available now.
4: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think, don't let your speed creep.
5: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी।
6: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
5: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया।
6: दिल तो टूट पे किया।
5: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
7: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
5: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394।
8: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply doesn't work. Even if it's for quick reply, affects your concentration and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
9: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard! Help!
10: Okay, help's on its way.
11: Grab my hand!
12: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
13: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please respect the water.
14: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: और लीजिए साहब, अब आपसे इजाजत लेने का समय आ गया है। गमे हस्ती के तीर खा खा कर बेखतो बेसुरूर जाना है। ऐ हसीनों न रास्ता रोको, हम फकीरों को दूर जाना है। क्लियर क्लियर, रास्ता क्लियर। जाते जाते भाई उस हास्य कलाकार को भी याद करने जिनका नाम था बद्रुद्दीन जमालुद्दीन खान काजी, यानी जॉनी वॉकर। आज उनकी पुण्यतिथि है।

0: Land clarify.
1: ओके निकलते हैं भाई।
2: भाई फिल्मी हस्तियों के बारे में विस्तार से जानकारी तो बाली भाई लेकर आ रहे हैं, उनका इंतजार कीजिए। रवि शर्मा को इजाजत दीजिए। हैव अ सुपर्ब डे।

आज बहुत सारे ट्रिब्यूट्स हैं। संजय दत्त जी के गाने मोस्टली 90s के हैं। हम एक ही गाना 90s का पर आवर पेश कर सकते हैं, इसलिए हम ज़्यादा गाने संजय दत्त जी के नहीं सुना सकते, लेकिन थर्ड आवर में ज़रूर मैं करूँगा। आज ट्रिब्यूट्स बहुत सारी हैं, पर पहले संजय दत्त जी को हम हैप्पी बर्थडे कर दें। दैट्स राइट, आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद हिम इन द 1990s, 92 में अमेरिका में जब कितने 11 शोज हुए थे, तब मुझे ले गए थे एक ही गाना पटेल रैप करने के लिए, और संजय दत्त जी के साथ काफ़ी बाय एयर जाते थे हर स्टॉप्स में, तो साथ बैठते थे और काफ़ी मस्ती करते थे और रैप सुना करते थे, और वहाँ से दोस्ती हुई। और 11 शोज़ हमने अमेरिका और कनाडा में किए थे उस दौरान। इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल टूर बिकॉज उनकी फिल्म हिट गई थी, साजन और सड़क दोनों फिल्में, तो डिमांड बहुत था। एंड वहाँ से हमारी जब दोस्ती शुरू हुई तो वी न्यू ईच अदर वेरी वेल। Now you can say right from Rocky in 1981 to the latest films, Ranger and A Good Maharaja. December mein A Good Maharaja film aane wali hai Sanjay Dutt ji ki. So happy 67th birthday. Aur main zyada kuch nahi kahunga, itna hi kahunga ke 135 plus films. So they've done a brilliant job and he's very proud of his parents who were very famous, Nargis ji and Sunil Dutt ji. Ek baat aur main bhi kehna chahta hu ke kal maine ek gana jiske andar singer ka naam liya tha as Kumar Shanu, film Bazigar ka jo gana tha, aur maine kaha ke ek tune se milta hai, to mujhe immediately correction आई थी from हमारी प्यारी काजल, एंड शी करेक्टेड मी yesterday, सो आई स्टैंड करेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर सॉन्ग दैट वॉज एक्चुअली sung by विनोद राठौर rather than and जब मैंने कुमार सानू कहा तो शी सेंट मी अ नाइस पोलाइट वॉइस मेल saying इट्स विनोद राठौर, बदन मेरे को रात को घर जाकर वो वॉइस मेल मिला, तो मैंने कहा मैं ज़रूर लोगों से कहूँगा कि आपने मुझे करेक्ट किया। सो थैंक यू फॉर द करेक्शन काजल, एंड दैट वाज विनोद राठौड़। आगे मैं बढ़ूँ, आज ट्रिब्यूट्स तो बहुत सारे हैं। वी गॉट एफ सी मेहरा, फ़कीर चंद मेहरा, जिनकी अच्छी अच्छी फिल्में हैं जैसे कि ऐलान, शिकारी, प्रोफेसर, प्रिंस, और काफ़ी फिल्में प्रोड्यूस भी की थी। उनके दो बेटों ने काफ़ी फिल्में प्रोड्यूस की है और डायरेक्ट भी की है, विच आर उमेश मेहरा एंड राजीव मेहरा। राजीव मेहरा ने मुझे एक फिल्म में गाना गवाया था, उनकी फिल्म थी राम जाने, शाहरुख खान की फिल्म, और उसमें मैंने गाना गाया था झुमरी ने मांगे झुमरू से घुंगरू, और वो आनंद बख्शी ने गाना लिखा था। उन्होंने झगड़ा करके, क्योंकि म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं चाहते थे कि मैं गाऊं, और उन्होंने झगड़ा करके मुझे उस गाने में गवाया, फिल्म राम जाने में। सो आई एम थैंकफुल टू राजीव मेहरा, द सन ऑफ एफ सी मेहरा। सो एफ सी मेहरा की हम ट्रिब्यूट करेंगे नेक्स्ट। एंड जॉनी वॉकर साहब, जैसे हमारे रवि शर्मा जी ने बहुत अच्छी अदा से किया, एंड हमारे दिनेश पोपट जी ने कहा कि रवि जी हैज़ लेफ्ट ऑल लाइन क्लियर। थैंक यू वेरी मच, आई लव योर वन लाइनर्स दिनेश जी। एंड वी गॉट राजा मेहदी अली खां, उनके गाने तो माय गॉड, ओ माय गॉड। तो उनकी 60th डेथ एनिवर्सरी है, जॉनी वॉकर जी की 23rd डेथ एनिवर्सरी है, 18th डेथ एनिवर्सरी ऑफ एफ सी मेहरा, एंड वी आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग अनूप जलोटा जी 73rd बर्थडे। कल तो हंगामा हो गया था वहाँ मुंबई में, मेरा भाई वहाँ पार्टी में गया था, तो हरिहरन जी थे, नितिन मुकेश जी थे,
And then so many other singers turned up. Even Mika was there. And I saw the video on it. And Instagram pe kafi charcha chala tha. Sudesh Bhosle ji bhi the. So hangama ho gaya unki birthday pe. He's loved by the whole world. And coming very soon to London. So agar mauka mila to unko main le aunga. I'll try to phone him and get him to say hello to all of you. Aage aaj hai गुरु पूर्णिमा. गुरु पूर्णिमा के दिन हमेशा हम विश करते हैं हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू समबडी, बट देन दिस इज द करेक्ट वे ऑफ विशिंग एवरीबडी गुरु पूर्णिमा फ्रॉम लाइका गोल्ड फ्रॉम मी बाली ब्रह्म भट्ट इन दिस मैनर. सुनिएगा. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवा देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः.

0: We are remembering F.C. Mehra, a great producer who has produced many films under the label of Eagle Films.
1: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Yes, F.C. Mehra, Fakir Chand Mehra, born on 29th of August 1923 in Peshawar, and he passed away at the age of 84 on 29th of July 2008. Ab inke bare mein agar main kahun to Fakir Chand Mehra, F.C. Mehra, jaise hum industry mein jante hain, was a legendary Bollywood producer. He shaped Hindi cinema across 5 decades. Yes, under his premier banner, Eagle Films. जहाँ भी आप शमी कपूर की फिल्म्स भी देखते थे, तो starting में आता था Eagle Films, and he was the one. He pioneered international co-productions as well. आगे मैं बताता हूँ कैसे. And he delivered major commercial blockbusters. अब mid-century classics देखा जाए 1950s to 60s में, सिपाह सलार एक फिल्म थी 1956 में. हिज फर्स्ट ऑफिशियल फुल फ्लेज्ड प्रोडक्शन जो थी शम्मी कपूर की मुजरिम 1958 की. इट वाज अ सस्पेंस थ्रिलर स्टारिंग शम्मी कपूर एंड रागिनी. फिर उजाला फिल्म 1959 की, अ पॉपुलर ड्रामा स्टारिंग शम्मी कपूर, माला सिन्हा, राजकुमार. फिर सिंगापुर 1960 में, वन ऑफ द अर्लीस्ट बॉलीवुड मूवीज शॉट एक्सटेंसिवली ऑन लोकेशन अब्रॉड. फिर प्रोफेसर फिल्म आई जिसका गाना आपको मैंने सुनाया, आम्रपाली 1966 में, वैजयंती माला और सुनील दत्त जी, एन आइकॉनिक हिस्टोरिकल ड्रामा, यू नो. एंड मल्टी स्टारर्स में देखा जाए तो 1970s और 80s में एलान 1971 की फिल्म थी, साईफाई थ्रिलर थी विनोद खन्ना की, मनोरंजन डायरेक्टेड बाय शम्मी कपूर हिमसेल्फ. एंड देन वी हैड बंदी एंड आई कुड गो ऑन एंड ऑन विद ऑल द फिल्म्स दैट ही हैड डन. जैसे कि मनोरंजन है, आगे जाते हुए उत्तम कुमार एंड सुलक्षणा पंडित की एक फिल्म थी विच वॉज बंदी, BANDIE. फैमिली ड्रामा संजीव कुमार की, हमारे तुम्हारे, दैट्स राइट, वो एक फिल्म थी. अलीबाबा 40 चोर, वो भी इनकी थी. सोनी महिवाल भी इनकी थी. एंड देन अनदर सक्सेसफुल इंडो सोवियत रोमांटिक ड्रामा सनी डियोल, और ये थी सोनी महिवाल 1984 की. आखिरी अदालत 1988 की, विनोद खन्ना और डिम्पल कपाड़िया. शिकारी फिल्म थी. फिर मैनी अदर्स. बट अगर इनकी फिल्मों के बारे में मैं आगे बढ़ूं तो इनकी एग्जैक्ट ओवरऑल नेट, जब पैसे इनके कितने थे, इतनी फिल्मों में से कितना कमाए थे, वो ही हेल्ड सब्सटेंशियल एसेट्स इंक्लूडिंग 20% स्टेक इन ईगल फिल्म्स. एंड देन ही ownership shares in Plaza Cinema in Delhi, Minerva Cinema in Mumbai, RBI bonds worth 1 crore rupees. Dusre Khandala mein ek bungalow, phir Mumbai mein ek flat, and career and assets background. And then dono beto ne bhi multiply kiya paisa, Umesh and Rajiv Mehra ne. So we are remembering none other than F.C. Mehra, who has given us such great films. लेकिन बॉलीवुड में इतनी जानकारी नहीं होती है, और लाइका गोल्ड में हमारा फर्ज है कि हम आपको ये जानकारी दें. आई होप यू रियलाइज वेन यू सी शमी कपूर्स प्रोफेसर फिल्म या प्रिंस फिल्म कि किसने पैसा डाल के इन फिल्मों को बनाया था. दैट वॉज फकीर चंद मेहरा, F.C. Mehra.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound, US dollars 1.3287, Indian rupees 127.17, Pakistani rupees 368.92, Afghan Afghanis 87.11, Kenyan shillings 171.88, and Mauritian rupees 62.95.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Gold is currently trading at £97.40 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
4: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
5: This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colors TV. Khatron Ke Khiladi every Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV.
6: Khatron Ke Khiladi.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Strong roots, less hair foil, and that healthy shine you notice straight away from the house of Bedianath with over 100 years of Ayurvedic legacy.
5: Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham.

0: एवरग्रीन गाना एंड लिखा किसने, राजा मेहदी लिखा। हम अक्सर ये गाना सुनाते हैं तो मुकेश जी को याद करेंगे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को याद करेंगे, मनोज कुमार जी को याद करेंगे, फिल्म अनीता को याद करेंगे, हम साधना जी को याद करेंगे, लेकिन राजा मेहदी अली खान को याद नहीं करते, आज करते। Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. Ye hai Leica Radio.
0: And Ragasan, Leica Radio Network has confirmed a partnership with the premium hospitality brand Ragasan. Details at LeicaRadio.com. Leica Radio Network is the exclusive radio partner of the stage musical Diwali Story, taking place at the OVO Arena Wembley on Sunday, 27 September. Visit AXS or Wembley for tickets.
2: का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
0: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel. Southall Travel is pleased to announce that the FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call Southall Travel for the most competitive Dubai deals on 0208 574 8410. It's all protected.

हाँ जी, याद करते हैं हम साधना जी को, फिल्म वो कौन थी, मदन मोहन जी को, लता मंगेशकर जी को, लेकिन राजा मेहंदी अली खान को कोई याद नहीं करता, जिन्होंने इस गाने में जान डाली। यस, ये भी गाना है जब याद किसी की आती है फिल्म का, महेंद्र कपूर जी ने गाया ये गाना, राजा मेहदी अली खान जी ने लिखा, मदन मोहन जी ने संगीत दिया। अरी ओ शोक कलियों मुस्कुरा देना।

0: Are you listening? Leica Radio is now available across Coventry on DAB.
1: इन्होंने कहा मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, लेकिन आंसू तो हम जरूर बहाएंगे। राजा मेहदी अली खान जी, आपको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। क्या लिखा है आपने?

0: is Leica Radio across the Midlands.
1: जी हाँ, खूबसूरत आवाज सुन रहेंगे आप अनूप जलोटा जी की. विशिंग हिम हैप्पी 73rd बर्थडे. मैंने फोन किया लेकिन फोन नहीं उठाया, बिकॉज कल लेट नाइट हुई होगी, पार्टी चली थी बहुत लेट तक.

0: tide. Phone.
1: Back before dark, love. Okay.
2: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
3: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
4: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken, with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount. Plus, a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
5: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड वेम्बली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में.
6: Punjab, the biggest tunes, not

0: Listen to the freshest hits added daily on Lycra Radio.
1: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit HeartyHanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit HeartyHanks.com now.
2: कुछ exciting खाने का मन है? तो आओ Egg Junction Leicester. यहाँ मिलेगा sizzling egg keema, flavorful boil tikka rice और special veg starters. सब के लिए कुछ न कुछ है. 62-64 Belgrave Road, LE4-5AS पर. चाहे dine in करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ. कॉल कीजिए 0116-332-5100. एग जंक्शन, जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहां हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी.
0: ये है लाइका गोल्ड 2.

0: Book now, visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Lestamela is back.
2: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
1: Roach Killer. Get ready for big tunes, big vibes, and a massive live performance.
2: Hosted by the team of Lyco Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
1: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
2: Arts Council England.
3: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
2: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Burfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same burfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.

0: Isha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time, legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
2: Dil ne ye kaha hai dil se. Bole chudiya.
1: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
4: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड वेम्बली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
5: Punjab, the biggest tunes, not

0: जिंदगी।
1: लिसन टू लाइक गोल्ड 2 ऑन लाइक रेडियो मोबाइल ऐप लाइक रेडियो .com एंड एलेक्सा प्ले लाइक गोल्ड 2। बॉलीवुड्स बिगेस्ट 90 सॉन्ग्स नॉन

0: स्टेशन इन दुबई।
1: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
2: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
1: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
3: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores.
4: You're both on the same road, same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes, because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
5: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है।
6: Order online at pujasweets.com. From barfi, laddus, gulab jamun to samosa and gathia. From catering starters to dessert, Pooja Sweets and Savories.
7: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 or visit Melton Road, LE4-5EA.
6: Pooja Sweets and Savories.
3: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network.
8: Leica Radio.
3: Pay close attention and name the film of this cracker classic.

0: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
1: फोन 0208574 8410।
0: 2400 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.